0: 말해! 뭐지, 뭐지, 뭐지? 어, 내가 어떻게 하네? 자, 자, 자, 자, 자.
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख अरे और ये बाप रे बाप इस टाइम तो ब्लास्टिंग मारे लू हो दो चार भी क्या लिखवा ले का अरे रे ए ए
1: आ जिगर पलट